चरहि प्रथम पैरवी बुलावली पुन आकी गावे बंगाली पुन असलेखी की पई बारी हे पैरों की पांचो नारी।

अष्टपुत्रा भैरव के गावे गायन पात्रा द्वितीया मालक साक्या लापे संग रागनी पांचो था पै गोंडा करी अरदेव गंधा दी गंधारी से हुते उचारी तुनाश्री ये पांचो गाई माल राग काओ सक संग लाई

पुन गावे आसा गुण गुणी ऊंचा सुर सुपन गिनी मिघ राग स्यों पांचो चीनी।

जग अमरिया टल आतूल ठाकर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दया हुए बेली जमदूत खाल निखंजन सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कहे सवास जियो मेरे सिख सुनाओ पुत भाईओ मेरे हर भाणाओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सवास जियो

कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम बद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोग सुत बनता, कोए न किस की धरिया, सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे ऊड आवै साय कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बाल बाल साध बल जाइए,

जब गर्ग करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आ गर्ग करत हो कब हो तो मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन शिष्ट सब धारै।

महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीन तनह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णद भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पुप्पा अंड जेर से तज कीनी उतभुज खान बहो रच दीनी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट पयो संग्रे गैठा सगरी सृष्टि खाए अचंभव आजुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारा सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तु जितब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे।

दुष्ट अरिष्ट ठरे तत्काल्ला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तन कमे हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शबय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल भासते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारू कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी।

चौ भाई संबत सत्रह सहसपणजा अर्ध सहसुन तीन गहजा भाद्रव सुधी अष्टमी रबारा तीर्थ सदर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री पुप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत।

सरणे आए पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुगे

काल विच दिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंछै तिसका हुए उदारो ए वस्त जी रह जाई निद्र निद्रा गुर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब ना

लाहे प्राप्त कर रहे सो। गुरु सवारी साध संगत जी, पिछले दो दिनों तो आसा राग विच गुरु अमरदास महाराज जी की उचारण की हुई खास बाणी पट्टी

हर फुरमान दरगाह का आया। अगों कहन लगा भी चलो ठीक है, एक बेनती है कि मैं बहुत सारे पिंडां दा जिमीदार हाँ, चौधरी हाँ, वो सारी जमीन मैं मजारियां नूं हिस्से ठेके ते दित्ती होई है, तुसी मैनूं एक रात का समा दिओ, मैं कुछ पिंडां चों ते मामला इकट्ठा कर लिया है, पर कुछ पिंड अजे रहिंदे, जे तुसी मैनूं एक रात का मौका दे दिओ ना ते मैं बचे हुए पिंडां विचों भी वह मामला इकट्ठा कर लां, करूं अरदास। उन्हां नूं कहन लगा तुहाडे चरणां च बेनती है, गांव किछ बाकी, कुछ गांव कुछ पिंड बाकी ने, लियो नबेर आज की राती, अज रात रात च भज नस करके मैं सारा काम नबेड़ लांगा। और सुनो, उहदे विचों थोड़ा जिहा खर्चा परचा तुहानूं भी दे दियांगा। गज के आखो सतनाम श्री, सारी उम्र रिश्वत लई होवे, रिश्वत दित्ती होवे ना गुरमुखो, वह बंदा जमा नूं भी रिश्वत देण तों बाज नहीं आउंदा, वी शायद इत्थे भी कम चल ही जाए। कहन लगा किछ पी खर्च तुम्हारा सारों, खर्चे परचे लई कुछ तुहानूं भी दे दियांगा। सुबह नवाज सराय गुजार, भाव सवेरे आपां फिर सराय विच नवाज करांगे, सेंस नमाज करके नहीं तुरांगे, नमाज तों पहले ही तुर पांगे, सवक्ते तुर पांगे। साध संग जाको जिन्हां दी गुरु की संगत विच आ के वैगुरु विच मन लग गया, असल विच फिर वो जिंदगी दी बाजी नूं इत्थों जित के जांदे ने। वरना मनुख इत्थों दे लेखे जोखे, माया दे लेखे जोखे बड़े सिख जांदा है, पर वो लेखे जोखे और अंतम समा भी भुल जांदा है, भी आखिर इस रूहे जमीन तों गुरमुखों हर एक नूं जाना ही पैंदा। असल च ये जड़ी माया है जिसनों सच्चे पातशाह ने रिजक किया है, माया केवल करेंसी नहीं, ये जिन्नी मनुख कमांदा जांदा है दी त्रिशना उन्नी ज्यादा वधदी जांदी है। सहस खट्टे लख को उठ तावै, त्रिपत ना आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, माया दा मोह आगलड़ा मैंने बहुत ज्यादा, बब्बै बूझै नाही मूड़े भरम भुले तेरा जन्म गया, अण होंदा नाओ तरायो पांदा अवरा का भार तुद लिया। असल विच ते महाराज ये पांदे नाल संवाद हो रहा है, उन्हूं कह रहे ने भी तू तेरा अपना जीवन भी अध्यात्मक पक्षों गया गुजरिया है, ते जिन्हां नूं तू तैयार कर रहा है ना आत्मक पक्षों अमीर वह भी नहीं होणगे, क्योंकि जदों तू खुद ही नहीं सिख्या ते तू उन्हां नूं की सिखाएगा। अण होंदा नाओ तरायो पांदा, तू एवें ही अपना नाम पांदा रखा लिया, तू पांदे दी परिभाषा नूं पूरा नहीं करदा। इहदा मतलब की है सत संगत जी, विद्यार्थी नूं केवल अखर सिखा देने काफी नहीं हुंदे, किसी भी सबजैक्ट विच उहदे मार्क्स पास होण तों ज्यादा आ जाण, ये तो चलो प्राइमरी गल है ना, इस तो बिना तो गल बननी नहीं। इस दे नाल नाल असल हुंदा जीवन जाच, जीवन जाच। तुसी हुण देखदे हो बई जिन्ने वड्डे वड्डे स्कैंडल हुंदे ने, वो कोई अनपढ़ बंदा नहीं करदा, माफ करना मैं, कोई अनपढ़ बंदा नहीं करदा, सब वेल एजुकेटेड लोग। इहदा मतलब अखरी ज्ञान बहुत हो गया, पर जीवन जाच पक्षों काम जिन्हें सिखाया उहदा अपना ही खराब सी, उन्हें अगों की सिखाना सी। अण होंदा नाओ तरायो पांदा, अपना नाम पांदा रखा लिया, अध्यापक रखा लिया, टीचर वजन लग पिया,

बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राखुड़ाई तोए रहाओ विश्वे चसियां कड़ियां पैरा तिती वारी महो वा सूरज को रुतनेक नानक करते के वेस राग तना श्री महला पहला गगन में ताल रव चंदीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियान लो पौन चौरो करे सगल बंदराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पौ खन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिस पावे सो आरती होए हार चरण कवल मकरंद लो भित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुली पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधन जानिया तिनंतर हव मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलह चुभ दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खण ब्रह्मंडा है हम ग्री मस्कीन प्रप तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहला औद घटे दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरे हो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस अकत कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहा जो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे।

जन नानी तन कै बल भर जाय जय कट प्रगति आय पैर महला पंजमा निकट बजय सोबरा क्यों करे बिख संचय नित डरता फिरे निकट यर भेद न पाया बिन सतगुर सा मोहि माया नेड़ा नेड़ा सब को क्या है गुरु भेद बिरला को लह राह निकट न देखे पर ग्रह जाए दरभेरे मिथ्या कर खाए पैठ गौरी हर संग न जाने वाहगुरु है परम पलानिया निकट न जाने भुल को माया मोह मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संदर जाए वाहगुरु है परम पलाए जिसमें सकर्म लिखे आल लाट सगुर सेवे खुले कपाट अंतर बार निकट सोए जन नानक आवाए ना जावे कोई पैरो महला पंजमा जित राखे तिस गौन मारे सब तुझे अंतर सगल संसारे कोट पाव चित वत है प्राणी सो होवे जे करे चोज बिनाणी राखो राखो कृपाचार तेरी संत रह दरबार रहो जन सेव्या निरपाव सुखदाता तिन पौ दूर किया एक पराता जो तू कर सोई पुन हो मारे न रखे दूजा खोए क्या तू सोचे मानस बाण अंतर जामे पुरख सो जान एक टेक को आधार सग जन सृजनहार जिस ऊपर नजर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिसका रखा को सोए जन नानक पढ़ना साका कोय पैर महला पंजमा तो कड़िय जय होवे बाहर तो कड़िय जय विसरे नार हर तो कड़िय जय दूजा पाए क्या कड़िय जरा सुमाए माया में कड़े कड़ पछया बिन नामे प्राम प्राम प्राम खपया रहो थोकड़िय जे दूजा करता थोकड़िय जे अन्याय को मरता थोकड़िय जे किछ जाने नाही काकड़िय जे भरपूर समाहे थोकड़िय जे किछ होए तंगाण थोकड़िय जे भूल रंजाण गुर कया जो होए सब प्रभु से तब काड़ा छोड़ अजंत हम सोते प्रभु तुम्हें ठाकर सब कहो तेरा जो पावे त्यों करे न बेरा द्वितीय नास जिक्रया सुमाए राखो पैज नानक शरण आए पर महला पंजमा बिन बाजे कैसे निर्दकारी बिन कंठ कैसे गावन हारी जीर बिना कैसे बदेर बाप ना बिना बिरसाए सब काज ना बिना कहो को तरया बिन सतगुर कैसे पार परया राह बिन जेवा कहाँ को भगता बिन सर्वना कहाँ को सुनता बिन निद्रा कहाँ को बेखे ना बिना नर कहीं ना लेखे बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन हमरे कैसे राजमंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना ना बिना सब जग बहुराना बिन बैरा कहाँ बैरागी बिन उत्या कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे ना बिना सब सदी चूरे बिन गुर दिख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कै सो त्यान बिन पै कथनी सर्व बेकार कौनाने दर का विचार पर महला पंजमा हो में रोग मन को दिना काम रोग मंगल वस के लीना दिस रोग पच मुए पतंगा रा नाद रोग खप गय कुरंगा जो जो दिस सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहो

किन्मने माणिको दिन मान समय पर पूरा सोजा फिर सदगुरु पूरा हर कीर्तन ताको आधार को नान से आप दया पर मल्ला पंजमा मोहे द्वाग नाम सिगारे रूप रंग दे नाम सुवारी मिट्यो दुख अर सगल संताप गुरु होए मेरे माई बाप सग सरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा पिटे मोहे कंत राव तब तुझे पूर्ण सब आशा मिटे अंधेर पाए प्रकाशा अनहद शब्द अचल विस्माद गुरु पूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट पै गोपाल ताके दर्शन सदा निहाल सर्व गुणा ताके बहुत निदान जाको सगुर दियो नाम जाको फेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कौना ने जो जन प्रपाए ताके रेन बिरला को पाए परमल्ला पंचमा चतुत पाप नयाल के आवे विश्वा भजत के चिन्नाय शर्मावे सारो दिन समझूरी कर रहे हर सिमरन की बेला बजर सिर पराए

अंध विहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं आवे करत करत एवे दुख पाया पूर्ण होत न कर्ज माया काम क्रोध लो मन लीना तड़मुआ ज्यों जल बिन मीना जिसके राखे हो यार आप हर नाम सदा जप जाप सा संगर के गुण गाया नानी सगुर पूरा पाया पर महला पंजमा अपनी दया

नित भाई तारले सागर संसार राव जन को लिख्या हर एहो निदान सजन दरगह पावे मान सो सहजन आनंद गुण गाओ आगे मिले निथा में थाओ।

तन गायब अपनी में मापे जाप दे जन सब से रहे हाथ नानक के प्रभु सदे साथ परम अल्लाह पंचम नाम हमारे अंतर धामी नाम हमारे आब कामी रोम रोम रवे आर नाम सगरपुर दिन के नौ दान नाम रतन मेरा भंडार अगम मोला प्रया पार राव नाम हमारे न चल धने नाम कि समय बने नाम हमारे पूरा सा नाम हमारे बेपरवाह नाम हमारे भोजन पाओ नाम हमारे मन का साओ नाम न विसरे सुन प्रसाद

तो चतुर सुज्ञान सगल प्यान का सगल पयान का पवन सह जन अपने के हर मन बसाय पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान अमृत नाम कर कृपा संत डल लाए नानक साधु संग समाये पर महला पंचमा संत मंडल में हर मन वसाय संत मंडल में दुर्सव नसाय संत मंडल में जमा रीत संग संग हो एक परीता

का है। संसंग निर्मृपाणे संत मंडल में नाम बखाने संत मंडल का ने चरयासन संत मंडल में पाप नासन संत मंडल में निर्मल कथा संसंग में दुखल नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण सास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक होत पोत भगवान पर महला पंजवा रोग कवन जा रखे आप ते जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे तिस ऊपर ते काल पर हराय सदा सकाई हर नाम जो चित आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ता कह जाम राव जब ए हो ना सो तब किने उपाया कवन मूल ते क्या प्रगटाया

कर कृपा अपने सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए राव रोग दुख गुरु शब्द निवारे नाम खुद मन पे तर सारे गुरु पेट तो मन पे आनंद सर्व धन ना भगवंत जन्म के मिटे जम त्रास सत्संग कमल विगास गुण गावत नेचर विश्राम पूर्ण सगल काम दुर्लभ दयाई परवान सब रोई जप हर हर नाम कौना ने प्रभु कृपा करे सास गिरास जप हर हरि पर महला पंजमा सप्ते उचारा का नाओ सदा सदा तक गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बस है मन आए सिमर बना तो सचा सोए हलत पर तुमरी गत हो राहो पुरख निरंजन सजनार जी जन देव आहार कोट खच खन बख्शनहार भगत भाई सदा नार साचा तन साची वड्याई गुरपुर तिन चल मत पाई करक प्रा जस राख निहारा

दयाल भैरव महला पंचमा जस मृत मन होए पर गास मिट कले सुख सह निवास तिस प्रभ जस प्रभ दे पुर गुर की आपाय सेव सर्व सुख प्रभर नाव आठ पैर मेरे मन गौर जो इच्छे सोई बर पाए अर्कन मन वसाए आम जान रहे हर त्याय

कनक रावनार स्वामे सुलगटा के अंतर जामे करकर अपने सेवा लाए नान दातरे चरणाए पैर मोहल्ला पंजमारा लाज मारे जो नाम ना ले वह ना बेहून सुखी क्यों सोवे हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे मूल बिना साखा कत आए गुरु गोविंद मेरे मन त्याए जन्म जन्म की मैल उतारे बंधन काट हर संग मिलाए रहो तीर्थ नाए कहाँ सोच सैल मन को व्यापे हूँ मैं मैल कोड करम बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरता फूल बिन खाए बुझे नहीं भूख रोग जाए ता उतर दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापया जिन प्रभ के ना सो प्रभ नहीं जापया तन तन साध तन हर नाओ आठ बैर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करने हार सर नानक प्रभ पुरख अपार पैर मल्ला पंजमा गुरसु प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिन सकाय सगलाय जंजाल

कृपा आप अपने सेवको सदा प्रत्यय पारे भरजना कैसा सन्यारे मानसिको के तक बात जम तेरा कहते कर

पैरुमला पंचमकरण कान समरथ गुर मेरा जी प्राण सुख दाता नेरा पै पंजन अपना सिरा ए दर्शन देखे सब दुख जाए जात कत वेख तेरी शरणम बल बल जाय सतगुर चरणा राव पूर्ण काम मिले गुरुदेव फल सब फल दाता निर्मल सेव कर गलीने अपने दास राम नाम दियो निवास सदानंद नायक सोग दुख दर्द न है प्या पै रोग किछ सब किछ तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरु आगम पार निलम शोभा आचार्य बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल मिल रव्या सोय नानक सतगुर प्रभु होय पैर मोहल्ला पंजवा मंत्र रत राम रंग चरण सर मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर पंगावत भगवंत सतगुर दिनो पूरा मंत सुवड़ पागे जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार राव सोई ज्ञान सुसिमरा एक सो धनवंता जस बद बबेक सुकलवंता जय सिमरा स्वामी सुपतवंता जय आप बचानी गुरु प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन त्याया

हर का नाम जपिए साध संग हर का नाम का पूर्ण रंग नानक प्रभु कृपा तार साध साध सरदेव चार पैरो महला पंजवा पे सास अपे भेद अपे गड़गड़ जाने भेद जो स्वरूप जाके सब वथ कर्ण कान पूर्ण समरथ प्रभु की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख अराधो दुश्मन दुख न आवे निरे राव आपे बाण त्रण त्रिपुण सार दाके सुत प्रया संसारु आपे सब शक्ति संजोगी आपे निर आप निर्वाणी आपे भोगी जातगत भेखो तत् तत् सोए ते बंधु जनाई कोई सागर त्रिय नाम कै रंग गुण गावे नानक साध संग

पर्याय राम राम संत सदा सहाय कर बाहर नाले परमेश्वर राव रयास पूर्ण सब ठाए राव धन्यवाद जो बन जगत गोपाल जी प्राणत सुख प्रत पाल अपने दास को दे रखे हाथ निमकना छोटे सदे साथ हर सा प्रीतम न कोई सर संभाले सचा सोए

विश्व स्वजा का मन प्रकाश जन का पार ब्रह्म का निवास तिस गुरु कौशल करे नमस्कार तिस गुरु कौशल जाओ बलिहार सगुर के चरण तोये तोये पीवा गुरु नानक जप जप सद जीवा राग भैरो महला पंजवा पड़ताल करती जाय को अंकार सतगुरु प्रसाद प्रत पाल प्रभ किर पाल कवन गुण गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्व को तन ही राव अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि

राव संत जना को तम जो न साकाय रथ अंत दुख न लाई आप तरह सगल कुल तार जो तेरी शरणाई भगता के प्याज राख तू आप तेरी बढ़ियाई जन्म जन्म के कर दो काट दुदार ते नाई हम मूड मुग्ध कछ बुझे नाई तू आप दे बजाई जो तू पावे सोई कर न करना जाई जग तो पाए तो धंधे लाया मुंडे कार कमाई जन पदार्थ दुए हरिया सब दे सुरत न पाई मन मगम रचन किचु न सुजय दुर्मत अज्ञान अंधारा पव जल पाना पाव कभी डूम बिन गुर सिर पर सच शब्द रत जन सच प्रभु आप मिलाए गुर की बाणी सद पछाते सच रैल विलाए तुम आम निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के सद विचारे नानी तिनके सद लियारे राम नाम उतारे भैरव महला पंजमा उत्पतियां कर दो जाय को अंकार सदगुरु प्रसाद जिस ना हृदय सोई बड़ा राजा जिस ना हृदय तन पूरे काजा जिस ना हृदय तन कोट धन पाए ना बिना जन बिरथा जाए जिस लाए जिस हर तन रास सुबड़ पागे जिस गुर में सुखास राहो जिस ना हृदय तज कोट कई सहना जिस ना हृदय तस सहज सुखना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ ना बिना त्रग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तस सब के जुगता जिस नाम हृदय तन नौ निध पाई ना बिना प्रम या बह जाये जिस नाम हृदय सो वे प्रवाह जिस नाम हृदय तस सा दिला जिस नाम हृदय तस वट पर वारा ना बिना मन मुगा बारा जिस नाम हृदय तस न चल आसन जिस नाम हृदय तस तखत निवासन जिस नाम हृदय सब साचा साह नाम है ना ही पत वैसाह जिस नाम हृदय सब सब मैं जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बजाता जिस नाम हृदय सो सब तय ऊंचा ना बिना भ्रम जो नी मूचा जिस नाम हृदय तस प्रगट बहारा जिस नाम हृदय तस मिटया अंधियारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवाण ना बिना प्रयावण जाण

तत मिलाया पर महला पंचमा कोट विष्णु के नया अवतार कोट ब्रह्मांड जाय धर्मशाल कोट में स्वपाय सुभाय कोट ब्रह्म जग उत्साह जन लाय अशो तनि गोविंद मारा बन सको गुण विश्व तारा कोट माया जाके सेवकाय कोट जी जाके से जाय

मानवासु किता अचिंत प्रभु हम किया दिलासा अचिंत मारी पूर्ण आशा अचिंत माँ को सकल सिद्धांत अचिंत हमको गुरु दिन नौ मंत अचिंत मारे बिन सेवारु अचिंत मारे मिटे अंधेर अचिंत ही मन कीर्तन मिटा अचिंत ही सब प्रभु काट काट डिटा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत बस्यो मन सुख विश्राम अचिंत हमारे अनहत वाजय अचिंत मारे गोविंद गाजय अचिंत मारे मन पति आना ने चल तन अचिंत पछाना अचिंत उपजया सगल बाबे का अचिंत चरिया हर हर टेका

हरे भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव मेरे माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो ने दूजे, नाव मेरे बंधव नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई, माया में जस रखे उदास, कह कबीरों ता को उदास, नंगे अमन नंगे जाना कोई ना रही है राजा राना।

पहचाना। ओट जात कुल दौ बेसारे सुन सहज में बनत हमारे हमरा चगरा रान को पंडित मुलना छाटे दौ। राव बन बने आप आप रावो जय नहीं आप ता हो गावो पंडित मुलना जो लिख दिया चार चले हम कछु ना लिया।

जो निर तन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो सर तन निर तन कह जाए दिया दलिया बुलाए निरतन सरतन दोनों पाई प्रभु की कला ना मिटी जाए।

2000 ताने बाहर जाता भीतर आने गगन मंडल में लश्कर का करे सो सरदान छत्र सिर तारा जोगी गोर गोर करे हिंदू राम नाम उचराए

पायत के काल जाई जाई। ठाकुर हमरा सर्वलंता सर्व जी को प्रावधान देता रहो अंतर देव न जाने अंध। परम का मोहया पावे फंद ना पत्र बोले ना किस दे फोकड़ कर्म ने फला सेव। जे मृत को चंदन चढ़ावे उसे को कवन फल पावे। जे मृत को विषमय रुलाई ता मृत का क्या कर जाय। ख्यात कबीरों क्या हो पुकार समझ देख सकत गवार। दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत सदा सुखाले।

में खपे। माया सिमोनी पाई जत जे जत जत जी तत रकाई रव पंखे मृग माया मेरा थे स्वाकर मखिया दख संतापे तुरे उत माया में पेला सिद्ध चौरासी माया में खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूर्य चंदा तपे तपे सर माया में सूता।

लूबरा बिरख मोल माया में परा माया अंतर पिन देव सागर इंद्र अर्थ अर्थेव क्या कबीर जस उदर ते सुमाया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लगा देख नहीं सरे

सिमर दुख पंजना राव। जबल सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फुले नाहे। जब ही श्यार सिंह को खाए, फूल रहे सगले बन राये। जितो बुढ़े हार उतरे, गुरुप्रसादी पार उतरे। दास कबीर कहे समझाए, केवल राम रहुल बुलाए। सतर सहे सलार है जाके, सवा लाख पे काबर ताके। सेख जो कैयत कोट अठासी, छपन कोट जाके खेल खासी। मो गरीब के को गुजरावे, मजर दूर मैल को पावे। राव 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना।

सैताने दुनिया दोसरोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा भिखारी देव जवाब हो बजगारी दास कबीर तेरे पना सुमाना प्रश्न जिक राख रहमाना सबको चरण का तयू ना जानो बैकंठ है कहाँ रहो

वैकुंठ द्वारा कह कमेर अब कही है काहे सा संगत वैकुंठ आए क्यों ले जाए गाड़ का पाई दोवर कोट गर ते बरकाई राव पांच पचीस मोह मत मत सर आडी परबल माया जन गरीब को जो न पहुंचे का करूं रागु राया काम के बारे दुख सुख दरवाने पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान मा बड़ दुंदर तय मन मावा सि राजा स्वाद सना टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तिसना तिर राय कट पितर यो गढ़ लियो न जाई प्रेम पलिता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जालिए कह चोट सजाया सत संजोग लड़ने लगा तोरे दो दरवाजा संग संगत अरगुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन के कटकाल पै भाषे दास कमीर चढ़ो गढ़ पर राज लियो अविनाशी गंग गोसाइन गैर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर मरना डिगे तन काय को डराए चरण कमल चित रहो समाय रहो

गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु हाँ गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ

पूरन दृष्ट तेरी राम। गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसिय गुरु कै,

जाओ कोई ओट तुहारी रहाओ, बिना सिमरन जो जीवन बलनाओ, सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को राज कुमावे, अंत चले गोहारी, गुण निदान गुण तिन ही गाए,

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵ ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਬਸੰਪਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤਿਆ ਗਣਤਿਆ ਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਰ ਕਿਨ ਕਾਇਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨ ਆਵੇ ਕਾਂਖੀਏ ਕੇ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕੁਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਆਧਾਰੋ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗੜ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬਨ ਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪਤਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗੇ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬੇਮੋਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਬਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੇ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸੁਖ ਵਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਅਣਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲੇ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮਹਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਿਆਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨੀ ਚੌਂਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲੇ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਕੜ ਕੜ ਨਾਥੇ ਅਨਾਥ ਸਰੰਤ ਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੁਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਪਾਰੀ ਅਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਅਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਹਨੇਰੇ ਸੁਲ ਸੇਠ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖੀਆ ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ
अनक माया रंग तिख नाम बुझावे, हर का नाम जवते अगावे, जय मार्ग्यो जाते अकेला ते हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, छूट नहीं कोट लख बाही, नाम जपते पार पुराही, अनक बिघन जय सिंघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे बसराम, हो मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाव खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध कै संग, जय मार के गने जाए ना कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा, जय पेंडे महंत गुब्बारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सुयानू, अर का नाम तै नाल पछानू, जय महा भ्यान तव तबव काम, तय अर के नाम की तुम्हें उपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझे अकरखय, तय नानकार अर अमृत बरखय, भगजना की बर्तन नाम, संत जना के मन बसराम, अर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, अर जस करत संत दिन रात, हर रे उखद साधक मात, अर जन के अर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत बिभेक, हर का नाम जन को मुगत जुगत, हर के नाम जन को त्रिवत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै उड़ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओतपोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुगत बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सवती उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याइए, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक भव सातर भव सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नामे अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट सात्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन मध्य फिरे, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे का राती, व्रत नेम करे बहु भाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माव दात पीसर थीवे, अगनमय होमत प्राण, कनक सुवै वर भूम दान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संयमयत साधन, निमख निमख कर शरीर कुटावे, तो पियो में मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै, सोच करे दिन सिर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया, टरे जल धोवे बोधे अनीत, शुद्ध काव काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बमूच, बहुत सियान पजम का भव व्यापे, अनक जतन कर त्रिसरना त्रापे, भेख अनेक गरणी बुझै, कोट पाप दरगे नहीं सिजै, छूट सुनाई उपयाल मुहे व्यापे, माया जाल वर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदु गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग होमै छोरै, जे को जन मरण ते डरै, साजना की सरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तां कै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते ऊंचा,
जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन समद्रे टेता, नानक पाप पुण नहीं ले पा, निर तन को तन तेरो नाउन, थावे को नाउ तेरा था, निमाने को ब्रव तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गात मित जानो आपे, अपन संग आ प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवरण जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उदम में उदम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल वाणी में अमृत बानी, हर को जास सुनरसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जय घट वसे हर नाम सलोक, निर्गुण यारे आने आसु प्रभ सदा संवाल, जिनकी आतिस चीत रख नानक निभि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हे उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया उपर साग सैन, मुख पिया बैठ को दैन, निर्गुणा गुण कछु ना बुझै, बख्श लव तो नानक सी जाय, जय प्रसाद धारी उपर सुख बसै, सुत परात मीत बनता संगसै, जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पाप के मुला, जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संसाद बसा, दीने अस्त पाव करन नेतर रसना, तिसे त्यागवर संग रचना, सह दुख मूढ़ व्यापे, नान काढ लियो प्रभ आपे, आदंत जो राखन हार, तिसो प्रीत न करे गवार, जांकी सेवा नवनित पावे, तां सो मूढ़ा मन नहीं लावे, जो ठाकर सद सदा झूरे, तां को अंदा जानत दूरे, जांकी टैल पावे दरगे मान, तिसे बसारे मुगदे अजान, सदा सदा पूलन हार, नानक राखन हारे उपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साज छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सुवस्त्र कर मानै, जो वन सो दूर परानै, छोड़ जाय तिसका श्राम करे, संग सुहाई तिस पर हरै, चंदन लेप्यो तारे धोए, गर्द प्रीत भसम संग होए, अंध कू में पतत बिकराल, नानक काढ लियो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक बिचारा करे दिन रात, बार भेख अंतर मल माया, शब सुनाहे कछ करै छुपाया, बार ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान, अंतरगन बार तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरिया था, जांके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात, सुने अंदा कैसे मार्ग पावे, कर गले उड़ निभावे, कहां बजारत बूझे डोरा, निस्कहिए तो समझे पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग, कहे पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तुहां उस गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सुहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई ता स्यों प्रीत, बलुआ कह ग्रह पीतर बसे, अणद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बिकार महा लोभ त्रोह, आहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन

पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम तो सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी। नानक दा सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुहाए। नानक कहू न सिजई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दास वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गवावे। एक पी ना दे दस पीहर लै तो मूड़ा कहो कहां करे। जे ठाकर सो नाही चारा तांको की जे सद नमस्कारा। जांके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। गणत सुहाव अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास। अपनी मान कछ वार सुहाल ज्ञानी मन रोस करे।

होवे। जिसकी बस्त तिसे आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे उते चौगन करे निहाल। नानक साहब सदा दयाल अनक पाद माया केत, सर्प रोबत जाने अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, बिन स्यो मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लौट रहो ते आंदे अंधार। बटाऊ सो जो लावे ने, तांको हाथ ने आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानके आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटंब सुभाया, मिथ्या में ममता माया। मिथ्या राज उबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रात हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या पसी उपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे अर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या अस्त पर दर्भ को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरह रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद। मिथ्या चरण पर बेकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर नाम लय। बिरथी सागत की आर जा, साच बिना के होत सूचा। बिरथा ना बिना तन आंद, मुख आव ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बेहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जय कट बस्यो वरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछे अवर कमावत, मरणी प्रीत मुखो गंड लावत। जाननहार प्रभु परबीन, बार भेख ना काहू भी। नवर उपदेश आपना करे, आवत जावत जन्मे मराय। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीत रह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे मानाए। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत। नेरा उपाव सियान सगलते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिसलै लड़ लाए, थान थनंतर रया समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नान करी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद। कर देव अष्टपदी जय प्रसाद, छति अमृत खाहे ते ठाकर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाड, पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत्यवर लुभावे। जय प्रसाद सुख से सुवीजय, मनाड़ पैर तांका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने, मुख ताको जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे, नानक पद सेती घर जावे। जय प्रसाद अदुग कंचन देही, लिवलाव तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकर प्रभु तांक। जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक तांकी भगत करे। जय प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद अस्वस्थ असवारी, मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राग, प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई। उठत बैठत सद तिसे त्याई, तिसे त्याय जो एक अलख है। इहां उहां नानक तेरी रख है, जय प्रसाद करे पुन बहुदान। मन आड़ पैर कर तिसका ध्यान, जय प्रसाद तू आचार विहारी। तिस प्रभु को साथ साथ चितारी, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी निकी जात। सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत रहे। गुर प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद सुने करन नाद। जय प्रसाद पेखे बसमाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद अहत कर चले। जय प्रसाद संपूर्ण फल, जय प्रसाद परम गत पावे। जय प्रसाद सुख सहज समावे, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो। गुर प्रसाद नानक मन जागो,
जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू तांको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तांस्यो राच। जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाहो आप गुवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मति उत्तम होए। सर्वन दान प्रभु तेरी मैं आप कछु न किनु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनक कछु न हाथ। सलोक अगमे अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता साधना की अचरज कथा इष्टपदी। साध कह संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत। साध कह संग मिटे अभिमान साध कह संग प्रगटे सो ज्ञान। साध कह संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साधक महिमा बरने कौन पुरानी नानक साधक की शोभा प्रा मैं सुमानी। साधक संग अगोचर मिलाए साधक संग सदा पर फुलाए। साधक संग आवे बस पंचा साधु संग अमृत रस पुंचा। साध संग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावे साध संग हस्तत मन पावे। साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सा मीत साधु के संग महापनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर। साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नहीं औताप साधक संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहू तावे साध कै संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त्या गोचर लहे साधु कै संग अजर सहे। साधु कै संग बसे थानी उच्चे साधु कै संग मैल पहुंचे। साधु कै संग दृढ़े सब धर्म साधु कै संग केवल पार ब्रह्म। साधु कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान।

जिस धन ते सब को बरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधु के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधु के संग सर्वथान अगम, नानक साधु के संग सबल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेड़ त्यो तने हाल, साध के संग कलूख तरह, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग आऊआ सुहेला, साध संग बिछर तर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक कुदरे साध सुन रसै।

साध संग सर पर निस्तराय, साध कह संग लगे ब्रह्म मीठा, साधु कह संग कड़कड़ डीठा, साध संग पयाग्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साधु कह संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साधकी महिमा वेद न जाना है, जेता सुने तेता बखयान है, साधकी उपमा तेह गुण ते दूर, साधकी उपमा रही भरपूर, साधकी शोभा का नाही अंत, साधकी शोभा सदा बेअंत, साधकी शोभा उजते उची, साधकी शोभा मूजते मूची, साधकी शोभा साध बने आई, नानक साध परा भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोई अवरणा पेखे, एक सबिन कोय नानके लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमले अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तो लपवान, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज का ज्यो सदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैला लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उजते उच्चा, मन अपने सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की धृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार्य माह, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ सांग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम उदार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभया, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जय द्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कारे, नानक व परस सगल निस्तारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस, पर तेरे रूप न पेखे नेतर, साधकी टहल संत संग हेत, कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आवस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टराए, इंद्री जेत पंच दुख ते रहत, नानकोट मदे को ऐसा परस, बैसनो सोजसी ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया त्यो हे भिन्न, कर्म कर तो वे ने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग्राच, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपरोवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानक्यो बैसनु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग,
मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की माति उत्तम होवै। भगवंत की टाल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक सा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म सोधै। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जूण न आवे। वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुखम जाने असथूल। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, सात संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे। सर्व रोग का खुद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगटर जान, सोदा दरगे प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सो जी पराए। सगल संग आत्मी उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुगत सो कहावे। तैसारक तैसास सोग, सदा नानते नहीं बेयोग। तैसा स्वर्ण तैसी उर्स माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो व्रता है साई जुगत, नानक्यो पुरख कहिए जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखे तैसा तन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फन होगा।

विधि अनक प्रकार अष्टपदि। कई कोट होए पुजारी, कई कोट चार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कव काव विचारे, कई कोट नमतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट भिग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्ब को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सरमाहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वै संतर, कई कोट देशभू मंडल, कई कोट सस्यर सूरन खेतर, कई कोट देवदान विंदर सिर छतर। सगल समगरी अपने सूत धार, नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरति अरशास्त्र, कई कोट कीर्तन सुबोधा, कई कोट नाना प्रकार जनता, कई कोट की अचर जीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव, कई कोट जख किन्द्र पसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सब ते निरह सबहू ते दूर, नानकिया विलवित्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरए, कई कोट बजूनी फिराए, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंता, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभु कै हाथे। कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवरागी, कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिन को मिल्यो प्रभु अविनाश। कई कोट मांगे सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो बसथार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक ओंकार। कई कोट कीने बपात, प्रभु ते ब्रह्म सुमात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तुन होवत आत्म प्रगा।

आवे अनक भोग बिखिया के करह न त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नान कर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ काम विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए योग चकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझे देखा करे बबेक आप है एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सदी रिया सुमाए आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान थनंतर एक सोए

न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने मुखियानी, सच सच सच सब की ना कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूपत सुंदर आ पारे अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखयानी। पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उधर नहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, संत संग नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कै दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवाए, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगद जून किरमाए। संत कै दुखन तृष्णा में जलाए, संत कै दुखन सब को छलाए, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच न चाए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत भावे ताए भी गत पाए। संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक अखन टिकण ना पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावेता उसका पिए मोख। संत का दुखी सदा पवेत, संत का दुखी किसे का नहीं मेत, संत के दुखी को डाण लागे, संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत भावेता लय मलाए। संत का दुखी अध बीज ते टूटै, संत का दुखी किते काज ना पहुंचै, संत के दुखी को दयान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत की लोथा। संत के दुखी की जाड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी गवर्न राखन हार, नानक संत भावे ता ले उबार। संत का दुखियों बल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव की दन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बाड़ तिल खेत में दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरी पया, नानक जो तिस भावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख ना त्रिष्टे कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके होए करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास ग्रास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजो से अनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी

गुर प्रसाद अपने आप सुझाए, तिसकी जानो तृष्णा बुझाए, सा संग हर हर जस कैत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अनदन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चेते आवे, सो संसेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेव कौ किसते डराए। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किछ जन्म नह किछ मरह, आपन चलते आप ही करै, आवन जावन दृष्टि अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, वनक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाई किच खांड, तारन तारे ब्रह्मांड, अलाख्य अपे पुरख प्रताप, आप जपाय नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभु के सेवक सगले उदारण, प्रभु के सेवक दुख बसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का सब जप है नियाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बडभागे, नाम जपत पावे बिसराम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभाए हो वै सोए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जेते उजेते समाए समाए, सोखन धान नू बनियाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सलोक

ही मोहे प्रभु की जो सगल घट सो है तनवंता है क्या को गर्भ है जा सबके तिसका दिया दरबे अद सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता आवे जे को वैद तार तिस दे नार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे और रोग नान सो जन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस थमन ज्यो पाखाण दाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत न स्तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तन संतन की बाछो तूर नानकी अर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पुरब लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार वरत्याग तू तसे चितार जो काछ करे सोई सुख मान भूला काए फिरे अजान कौन बसते आई तेरे सांग लपटरे रस लोभी पतांग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जेब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोला

जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्वथो का दाता। तिसकी सरना सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे। अवर सयान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आमन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जाने आ, सतगुर तिसका नाऊ। तिसका संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सत गुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर वचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख कालत पलत सुवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारे। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ ना जुनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। मन बेचे सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्ज रास। सेवा कर तो नेका मी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्व गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय अरनावन, कुबार गुर को बल जाऊ। सरवण दान जी का दाता, अठ पैर पार ब्रह्म रंग रता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम। स सियाण पलया न जाइये, नानक ऐसा गुरवट भागी पाइये। सबल दर्शन पेखत पनीता, परसत चरण गत निर्मल रीता। भेड़त सांग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवै। सुन कर भजन करने आकाने, मन संतोखा तुम पति आने। पूरा गोरे अखे हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संता। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मलाए। जिह बाय कुस्त त्या अनेका, सत पुरख पूर्ण बाबे का। काहू बोल ना पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, तां की कीमत किने ना पाई। अनक भगता बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरखा नाही कदे विनाश, जा के मन प्रगटे गुणतास। आड़ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको देवो। माया के संग न लेप, मन में राखे हर हरेक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरमो दुख तै तेनासे। तवत मैं ठाण वरताई अंत पया, दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे। अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे, भौ चूका निरपोय बसे। सगल व्याध मन ते खै नसे, जिस का साधन कृपा धारी। सत्संग जप ना मुरारी, तित पाई चूके परम गवन। सुन नानक हर हर जस सरवणा, निर्गुण आव सर गुण पियोई। कला तार जन सगली मोही, अपने चरत प्रभ आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोय। सर्व निरंतर एको सोए,

बिन भगती तनो सीचार। सर्व कल्याण सुख निध नाम अमूर्त जात पाए बिसराम, सकल दुखावत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतरे सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगजना के मन तन रंग, बिरला कहु पावे संग, एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहा सर्व समाए।

हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभदेव निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार।

अष्टपदि जाभ्य कार्यो कछ न दृष्टित पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन सुमाद तब बैर विरोध किस संग कमात

तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे प्रवीना तह वेदक ते बा कहां को चीना। जब अपन आप आप उर तारे तो सगन अप सगन का विचारे।

जयाचाल छेद अभेद सुमाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेशा जय का एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।

आप कर दिखाए खेल संकोचा तो नानक काय। जय अवगत भगत दयाप जय पसरे पासार संत प्रताप। दू पा कापे तनी उनकी शोभा नुह बनी। आपे कौतिक करे आनंद चोज आपे रस भोगना निरजोगा। जिस भावे तिस आपन नाय लावे जिस भावे तिस खेल खुलावे। भेस मारे अथा गणती अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक

जाय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंती अपार, नानक दास सदा बलिहार।

जाए, दुख दर्द मन ते भउ जाए। साच व्यापार करो व्यापारी, दरगन वह खेप तुम्हारी, कांटेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाए। तेते दूर कां को जाए, उबरे रख न हार ते आए, निरभउ जपे सगल पव मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होव सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुंचन हार। श्री उपर ठांडा गुरसूरा, नानक तां के कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्टा, दर्शन पेखते उदरत श्रेष्ठा। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरुख प्रधान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया, सा संग नानक कर त्याया। श्लोक

मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन के शुद्ध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यो प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वै सचियार धवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिसते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिख

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए।

है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात। सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात।

एते सुरत न पाइया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानी है समुंद साह सुल्तान ग्रह सेती माल तान कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसर है अंत न सिफते कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण

सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंग है जोध अपार, कित्या गणत नहीं विचार। केते खप तुट है वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, कित्या दुख भूख सद मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणा होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खायक आखण पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे। आखै से पे के जिसनो बख्से सिफत साला, नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आवहै अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल कर्म

पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले। गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरत

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद आप नाथ ना।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख हो है लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है

सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वरपंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म।

तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिरा चत्तर चक मन ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जापी जह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेस। अंग राग नरंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जानही जह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जाक है नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद त्व प्रसाद। गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो साहन साहो राजान राज पान आन पान। देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अबा अपंग गतमित अपार। गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम अतुत प्रचंड मितगत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद तो प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद। चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मान्या चत्तर चक्कर दान्या चाचरी छंद। न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काये अजन्म अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अदिश अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद। कथते के आछिज देसा के आपिज पेसा के आगंज कर्मै के आपंज भरमै के आपिज लोकै के आदित्य सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति है के क्षत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीनै के एक अधीनै के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक ब्याब है के गैबल गैब है के अफबल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज कर हीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलिमा के परमं फहिमा के आकल अलामा के साहिब कलामा के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामा सलिखत मुदामा गनिमल सकस्ता गरीबल परस्ता बिलंदल मकान जमीन उल जमाना तमीज उल तमाम रुजुअल निदान हरीफल अजीमै रजायक जकीना नेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजेजुल नवाज है गनिमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुपहंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है
निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्तार सावल छंद त्व प्रसाद नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं श्रीकः अमितो अमीकः सदैवं प्रभाः अजाः अजाः भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जुहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामर करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राज करहिंद हैं क्रिमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं ग्रिमल खराज हैं ग्रिबल निवाज हैं हरिफल सिकन हैं उरासर फिकन हैं कलंकं प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करहीम हैं समस्तल जुबा हैं के साहिब करा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तल निवास हैं के सर्वल गवन है हमें सलरवान है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परम परम ईस है समस्तल अधीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमिकल इमा है क्रिमल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है माद पार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जगात आजिज न बात अनचंज गात अणरंज बात अण टुट भंडार अण ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करणाल्या है अरकाल्या है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मनमान्य है जगजान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पारते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख
अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी क्रिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियं करियं क्रिमल रहीमे चतर चक्रवर्ते चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री मुखवाक पातशाही दसवी तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हों ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गान को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पावन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार के देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर अपार बडे बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जाए तो तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जौंतर लोको राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक सुंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस है भगते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुन्द्र न लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐस सो बैस बतायो साच कहो सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग

कूर किरिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री मुखवाक पातशाही दसवीं। कव्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए। चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब है करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आड़ संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दै मुझे अबरिय, मरण काल का त्रासन वरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुर जो करिहो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परि चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए, साधन के सुखे एक एक की पीर पछाना। घट घट के पट पट की जाना, जब उद करख करा करतारा। प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ। तम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारा। आप अपनी बूझ उचारा, तुम सब ही तेरा तिन रालम। जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्वकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा। जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सिव। निरंकार का चिन्हत न पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी। उत पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे स्तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो होवै मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कौ एक बार ते अहै, ताके काल निकट नह अहै। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिसट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो, ताके ताव तन कमह हरि हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट चाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किलविख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को छय करता। श्री अस्तुर जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या कि एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहि जै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो।

चरही। प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन असलिखी की पई बारी ए पैरव की पांचो नारी। पंचम हर

असंख जापे असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारे असंख सती असंख दातारे असंख सूर मोह पाक

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश माल पख खाहे असंख निंदक

अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाए।

सोई सोई सदा सच साहेब साचा सची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रहण रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीते आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश

अहंकारे आदेश तसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भव लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए त्राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुप नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचारे जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर।

बुद्ध तिथे कड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबलसूर तिन महराम रहिया भरपूर।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर।

जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि आवाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ धैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सभा तुम कावो आफात दा मोह बचावो सुखी बसा मोरो परवार सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को संघरिया पूर्ण होई हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तो मैं चाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है तुम तुन सत्र हमारे मारिया आफात दा मुझे उबरिया मरण काल का त्रासन वरिया हो जो सदा हमारे पच्छा सरिया तू जू करे हो रक्षा राख लो मखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए सिवजू अवतारा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब की ओ बेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार हता है मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदंते काय अवतारा सोई गुरु समझो हो मारा नमस्कार तुसी को मारी सकल प्रजा जने आप सवारी सबकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मुदगियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछांद चीटी दे कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक पीर पछाना घट घट के पड़पड़ की जाना जब कर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ कर्ख करत हो कब हूं तो मैं मिल तो देह तर सब हूं जेते बदन सरण सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम द्रंकार निर्विकार निरलंब याद अनिल अनाद असंभता का मूढ़ अचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कैर सदा सब निरंकार का चीनत नह पै आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लख न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहे पूपा अंडज जेर जसे तिजकीनी उत्पज खान बहर रज देनी कहूं फूल राजा होय बैठा कहूं समंड भयो शंकर अकैठा सिगरी सरड दुखाए अचम भाव यादगार स्वरूप स्यम भाव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठपा तुत पाता सकल मलेश करो रणघाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हुआ मरे पौरख जमन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब डारे जो कल कोय कुबार ते है ताके काल निकट न ऐ है रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तुरकाला कृपा दृढ़ धन जाहे न हर हो ताके ताप धन कमह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुट छा श्वसके न कोई ये कुबार जन तुम्हें संभारा काल फांचते ताहे वारा जिन नर नाम तुहारो कहा दार्द दुष्ट दोगते रहा खड़के तुम्हें सर तिहारी आपा दल हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोगते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किलपिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता श्री अतुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तुतकाला मन बांछत पल पावा सोई दुख न दिसा व्याप्त कोई अडैला सुना गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुना मूढ़ चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहा हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबर सत्रह सहस पड़िजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सूर्य अष्टमी रव बारा तीर सतद्रव ग्रंथ।

पंथ सागर समग्री तुम रे सूत्र धारी तम ते हो सो आग्या तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याई फिरंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमराऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस रिठे सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दयावे ताई सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चेता वे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु ही अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समर्थता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है आप जी दियां महान बख्शिशां रहमतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे अज दे विशेष दीवान पंथ दी महान शहीद भाई साहिब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा शहीद भाई दिलावर सिंह जी बब्बर शहीद भाई बलबीर सिंह जी टटां ते समूह शहीदां नूं याद करदिआं होइआं अज दे विशेष दीवान सजे सजे हुए दीवानां विच अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां होईआं बाणी पढ़दिआं विचारदिआं अनेकां भुल्लां हो गईआं होणगीआं अलपग जाण के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शणा अमृतमई बाणी दा भाव दर आईआं संगतां दे हिरदिआं च विसावणा सरबत दीआं तिल फुल पेटावां दर प्रवान करदिआं दरों घरों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज राश करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनिया पावन दरबार दी हाजरी भरदिआं गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने आप दे दर घर दे सेवक भाई जोगिंदर सिंह जी वल्लों अपने दोहतरे मिलन सिंह दे जन्म दिन की खुशी अंदर आप जी का शुकराना करदिआं होइआं पचंगी दी चढ़दी कला लई
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਰਘਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਬਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ।

करे सहवास जीव भगत सदगुरु पुरख सोई जिस हर प्रपाण पावे आनंद अनहद वजे वजे हरि आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निरदास जीव तुर लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए हर प्रपा जीव सदगुरु पाणे अपने वह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया मित पैजे मित बिकसे जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रथक हुंदे बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत पाई रामदास पैरी पाया अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्र किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान जियो सतगुरु पुरख जे बोलिया गुरु सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया

सत्संगत इतनी हाजिरी प्रवान करनी आप समूह संगतां अज बहुत दुखदाई समय विच सरदार सिंधा सिंह जी के परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करने वास्ते उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हो। समुचे भैणा भरावां दा धन्नवाद है जो परिवार नाल इस दुख की घड़ी में शरीक होए हो। आपां सारिआं ने मिल के अरदास करनी है। संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देह सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। बाबा आवो भाई हो गल मिले, मिल मिल देह आसीसा है। सतगुरु सरदार सिंधा सिंह कोलों संसार विच विचरदियां बेअंत भुल्लां होईयां होणगियां, भुल्लां नूं ना चितारदियां होईयां अपने चरणों में जीव काली निवास बख्शन। पिछे परिवार को सकिया संबंधियों भैन भरावों को भाणा मन का बल बख्शन, यही अरदास है। सो कीर्तन का समा समाप्त है। आओ सारे मिलकर आप आनंद सभी के पाठ करिए, उपरंत दीवान की समाप्ति होगी।